0: तो हाँ, ये बहुत ही सुंदर गाना था गीता दत्त जी का, और मूवी थी 12 o'clock. आई वंडर वॉट द मूवी वॉज अबाउट. आई डोंट थिंक आई हैव हर्ड अबाउट दिस मूवी बिफोर और सीन इट, बट इट इज इंट्रीगिंग.
1: राइट राइट. एंड आई थिंक यू नो, गीता दत्त के बारे में कुछ ना बोलूं दो लाइन तो बड़ा बेइंसाफी होगी. तो शी वॉज लाइक बॉर्न टू हिज जमींदार फैमिली वॉज नाउ इन बांग्लादेश. दे मूव टू असम एंड वेस्ट बंगाल. जमींदार मीन्स जमींदार फैमिली से देन दे मूव यू नो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन और बिफोर दैट. देन इट विकिपीडिया सेज दे मूव टू बॉम्बे इन ए स्मॉल फ्लैट. सो हाउ लाइफ चेंजेस. एंड शी वॉज वन ऑफ द 10 चिल्ड्रन. वॉज मैरिड टू गुरु दत्त एंड यू नो बोथ ऑफ देम डाइड वेरी यंग. So it's unfortunate, but she was a phenomenal, legendary singer who contributed so much to Hindi cinema and music.
0: Yeah, she had such a distinct voice. I love all her songs. All her songs were really popular and did really well. Unfortunately, we lose this great artist at a very young age, and but their songs live on with us forever. So Arun, let's mix things up a little bit. So when I send the message about request, I got a request from Dr. Ashok Shah, and then the next request from Charu. So Charu sent a request for this remix song of Ed Sheeran and Arjit Singh, and the record is called Sapphire.
1: Oh, Sapphire, like a Chase Sapphire, yeah. Card?
0: Or like the ring, Sapphire gemstone. So this is a request from Charu, sung by Arjit Singh and Ed Sheeran. Let's enjoy it. Thank you, Charu, for always coming up with great requests and songs which haven't been played before. So let's enjoy this song together with all our listeners.

0: आइडिया, क्योंकि इसमें सबकी टेस्ट अलग है, सबकी चॉइस अलग है, हर एक के मूड पे डिपेंड करता है. जो उन्होंने ये मैसेज पढ़ा और सबने अपने अलग अलग गाने रिक्वेस्ट किए हैं और वी गेट टू लिसन टू विविध टाइप ऑफ विविध मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ जानरा एंड सिंगर्स फ्रॉम 1940s टू 2026.
1: यस, सो दैट वाज सफायर और सफायर और व्हाट्स
0: सफायर इज ए नीलम, इट्स ए जेमस्टोन.
1: ऑलराइट, लेट्स हैव अनदर फरमाइश. दिस इज फ्रॉम Pawan Jindal Saab, Pawanji. This is a song by Hemant Kumar, another great singer. And this is, again, I think, from the 60s. The movie is Sannata. I haven't heard this song before, so it's a new song for me too. So let's all of us enjoy this song sung by Hemant Kumar. And this is requested by Pawan Jindal ji.

0: Wow, Raviji, that was such a wonderful song, 1949 song. It just speaks about women activism, feminism. It's such a modern concept, just like you. So that was a great song. I've heard it before, but not in its full form. The words were so beautiful, and this is such an appropriate song to be played on your birthday.
1: And on this, you know, special farmaishi song wali ki jo list hai aaj, ye jo gana tha 1949 ki movie tha, aur iske jo likha tha Aziz Kashmiri ne, musician the, composer the Vinod, he was a Punjabi Christian from Lahore.
0: Achha.
1: And sung by Lata Mangeshkar, Mohammad Rafi. There are two sides they are saying. The third singer was either Mr. Durrani or Satish Batra, so it's conflicting. ये गाने के सुना तो है लारी लप्पा मींस डिले करता रहता है या यू नो
0: लारी डजंट कमिट पर लाई रखता है
1: कमिट नहीं करता है तो बट सो दैट टाइप ऑफ ए मीनिंग एंड इज अ टीजर फॉर वुमेन टू इन द लास्ट स्टैंजा आई थिंक
0: इट वाज जुगलबंदी मेन एंड
1: वुमेन या टीजिंग ईच अदर एनी हाउ अगली फरमाइश किसकी है
0: तो अगली फरमाइश हमारे सुनने वाले हैं लंदन से सुन रहे हैं आई होप जागे हुए हैं पता नहीं क्या टाइम है पर आशा मल्होत्रा आशा जी जो लंदन में हैं उन्होंने फरमाइश दी है एक गजल की गजल गाई है मुन्नी बेगन ने तुम्हारे शहर में तो आशा जी आई होप यू आर एंजॉयिंग यू आर लिसनिंग टू गीतमाला आई डोंट नो विच शहर यू मीन वेदर यू मीन हाइड पार्क और पिकिप्सी और यू मीन आपका शहर मैनचेस्टर और लंदन तो मैंने भी ये गाना पहले सुना नहीं है ना ही ये गायिका का सुना है मुन्नी बेगम पर एनीवे सॉन्ग तो अच्छा होएगा ही आपने फरमाइश जो भेजी है तो सब सुनने वाले एंजॉय करते हैं ये प्यारी सी गजल

0: Fine.
1: To tune in from Florida to Geetmala.
0: Very good. This song was written by Sahir Ludhianvi aur iske singer the S.T. Burman, gaya Hemant Kumar. और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ मनीषा, जो तुम गाने जो डाउनलोड करती हो ना, वो जो है जो फ़ोन पे डाउनलोड करती हो उनका वॉल्यूम डिफरेंट है. जो रिक्वेस्ट अगर आती है लाइव प्रोग्राम के टाइम, उनका थोड़ा वॉल्यूम पूरा उठता नहीं है ऊपर, पता नहीं थोड़ा सप्रेस रहता है.
1: आई थिंक इट वुड बी फ्रॉम वेयर आई एम पिकिंग द सॉन्ग, बिकॉज व्हेन आई एम डूइंग इट ओवर हियर, बिकॉज आई एम इन अ रश टू मेक श्योर आई डोंट मेस अप, आई एम डाउनलोडिंग द सॉन्ग मे बी फ्रॉम not the original soundtrack. So I'll keep that in mind. But yeah, it was playing a little soft. But I hope it went in to our listeners and they could always crank up the volume on the radio or the computer to listen to it.
0: But I'm sure a lot of people have remote in their hands or app on their phone to adjust the volume.
1: So agli farmaish hai Dr. Parashar se. Dr. Parashar jo गीतमाला के लॉन्ग लॉन्ग टाइम लिसनर, जो यहाँ पे आते भी थे और शो भी करते थे पद्मा जी के साथ, उन्होंने फरमाइश भेजी है 1947 मूवी दो भाई, और उनका ये फेवरेट सॉन्ग है, अगेन संग बाय गीता रॉय/गीता दत्त, मेरा सुंदर सपना बीत गया.
0: अगर जो सुनने वाले कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने डॉक्टर पराशर को कभी नहीं मिले या ना जानते हों, ही इज़ ए रिटायर्ड नेफ्रोलॉजिस्ट. ही वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट फिजिशियंस टू कम टू डचेस काउंटी एंड यू नो हेल्प पीपल टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ इश्यूज.
1: एंड ही इज अ विकिपीडिया फॉर ऑल द बॉलीवुड सॉन्ग्स, एज वी हैव हर्ड मेनी ऑफ हिज शोज, मेनी ऑफ हिज गीतमाला. As a guest host, he has come with Padma and done many shows. So I hope this song is clear and it's a beautiful song. Parashar ji, I hope you and Girjesh ji are listening to this song.

0: All right, Dr. Parashar, yeah, that was not really the best quality of the song, but...
1: हमें खेद है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वॉल्यूम अच्छा नहीं था. आई थिंक नेक्स्ट टाइम वी हैव टू सी हाउ टू रिजॉल्व और प्रिवेंट दिस इश्यू फ्रॉम हैपनिंग अगेन.
0: यस, बट आई होप यू डिड एंजॉय लिटिल बिट ऑफ द सॉन्ग. द नेक्स्ट सॉन्ग इज अ फरमाइश फ्रॉम मालिनी जी, मालिनी मेहता. दिस इज लता मंगेशकर सॉन्ग, ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मुझे जीने दो. And I really like this song, Malini ji too. I've heard this song, and yeah, we haven't played it that much. So thank you for requesting this song. I'm sure our listeners are going to enjoy it. It's a Wahida Rehman, I think, is in the movie. Wahida Rehman and Sunil Dutt, Mujhe Jeene Do. I think it's a dacoit movie, the little bit which I know about it. So let's hear the song first. I hope this has good quality.

0: So that was a melodious song, and it was a little soft, but I hope you guys could put on your increase the volume and enjoy the full song.
1: इस गाने के जो संगीत दिया था जयदेव का, जयदेव के गाने कभी कभी हम बजाते हैं. He didn't have a very long career, but he has created some excellent compositions. I think on that note, मैं आपको suggest करूँगा, मैं फरमाइश मेरी ये है, कभी जो different themes choose करती है ना, कभी सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर के नाम से, जैसे जयदेव के गाने एक बार प्ले करो.
0: हाँ, वो किए हैं पहले हमने, तो हाँ जयदेव के भी करेंगे.
1: या शंकर जयकिशन, या
0: वी हैव लॉट्स ऑफ लॉन्ग वे टू गो, लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स, ट्रेजर ऑफ गीत्स फॉर टू प्ले ऑन गीत माला.
1: गीत एंड संगीत
0: बहुत ज्यादा मोती हैं जो गीत माला की माला में हम पिरो के अपने सुनने वालों को सुना सकते हैं.
1: गीतों और संगीतों की माला.
0: तो ये थी काफी सबकी फरमाइश आ गई. सो आई एम ग्लैड आई कुड गेट एवरीबडीज फरमाइश इन, एंड वी आर ऑलमोस्ट कमिंग टू द एंड ऑफ द शो. वी हैव 10 मोर मिनट्स. दिस नेक्स्ट सॉन्ग आई एम प्लेइंग इज अ सॉन्ग बाय अलका याग्निक. आई वॉन्टेड टू प्ले हर सॉन्ग बिकॉज जस्ट सॉ शी वॉज अवॉर्डेड द पद्माश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हर सिंगिंग. So this is one of her solo songs. Many of her songs were duets, but I wanted to play one of her solo songs, and this is the iconic Madhuri Dixit song Ek Do Teen Char from the movie Tezab and sung by Alka Yagnik.

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?